0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल प्रिंस ज्वेलर्स @bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

या दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। हमारे स्टूडियोज में 2 मिनट हो गए हैं एक बजकर। वेलकम एवरीवन, ये शनिवार मस्ती म्यूजिक। हैप्पी वीकेंड एवरीवन, होप एवरीवन इज एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल वीकेंड आउट देयर। बार आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। रेडियो विस्वानी आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से आपके साथ अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक साथ है हमारा आपका। बहुत कुछ लेकर एक बार फिर हम आपके लिए उपस्थित हुए दोस्तों, साथ दीजिएगा ठीक 3 बजे तक ऑल हिट्स न्यू हिट्स के साथ।

इसी के साथ साथ अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, आज आपकी जन्मदिन है, कुछ भी आप स्पेशल है आपकी खुशियाँ में, तो हम भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कांग्रेचुलेशंस। जी हाँ, अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, कुछ भी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, तो 3279-1701 हमारा स्टूडियो डायरेक्ट लाइन नंबर है, और नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर एसएमएस कर सकते हैं।

महीना क्या है सभी को पता है? जी हाँ, अगस्त है, बहुत कुछ है। सावन का महीना चल रही है। सावन के महीना में कौन सा त्योहार है? राखी का त्योहार, सभी को पता है। भाई बहन के प्यार का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार है। हर तरफ खुशियों के बौछार है दोस्तों। बंधा एक रेशम की डोरी, भाई बहन का प्यार है। सभी को पता है कि रक्षाबंधन इज ऑन 28th।

0: बहुत प्यारा से राखी गीत आपने सुना, गढ़वाल की राखी। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द।
2: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote word Briswani.

0: your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas.
1: जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 11 मिनट हो गए हैं 1:00 ब्रिस्बेन टाइम। और अगर आपने भी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन AM पर। अभी आपने बहुत प्यारा सा गीत राखी पर सुना। हमारे पास आगे आगे बहुत खूबसूरत राखी पर गीत है, इसे आप इस प्रोग्राम में आज और कल के दिन में सुनेंगे क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को राखी है और मैं तो उस दिन रेडियो पर हुई नहीं, तो इसलिए आज और कल के बीच में आप राखी का गीत जो है आपने भाई बहन को याद करना चाहते हैं तो हमारे साथ शामिल हो जाए 3279-1701 पर, नहीं तो मोबाइल पर SMS करें। अब मुझे पता है कि आज कल बहुत से लोग जो है आजकल मुझे SMS ज्यादा करते हैं, चलते हैं, पता है सभी को सावन का महीना है। सावन पर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

ज्यादा सो बहुत परसर सावन पर गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। बहुत समय नहीं लेते हुए हम चलते हैं फरमाशी प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे पास कुछ श्रद्धांजलि सॉन्ग्स के भी यहाँ पर फरमाइश आई है, जिसे आपको पता है आज हमारे रेडियो विस्वानी के लिए बहुत ही इमोशनल है और सभी के लिए। हमारे पास कुछ मेलबर्न से भी कॉल्स है, कुछ सिडनी से और न्यूजीलैंड से, साथ साथ में फिजी वालों के लिए भी बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है। जैसे आपको पता है कि हमारी फॉर्मर बहन जी रेडियो अनाउंसर, जो लास्ट हमारी ब्रिस्बानी की अनाउंसर थी, उनकी डेथ हो गई है और बहुत से लोगों ने मांग किया कि उनकी श्रद्धांजलि पर हम कुछ गीत बजाएं। आज पहली फरमाइश है हमारे पास, उनकी याद में आज याद कर रहे हैं फॉरेस्ट लेक से हमारे हाफिज भाई हाफिज अली खान, सविदा खान, उनके परिवार, और वहाँ मेनली वेस्ट से लक्ष्मी याद कर रही है प्रभा मिश्रा को, और जिन्होंने हमारे रेडियो विज़मानी के भी बहुत प्रोग्राम किए हैं बहन जी की जगह पर। बहुत सुंदर प्रोग्राम लेकर आती थी, उनकी आवाज़ में बहुत मिठास थी, बहुत प्यारी थी। चलते हैं उनके लिए आज पहला जो श्रद्धांजलि गीत की फरमाइश हमारे पास आई है फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान, जबीदा खान, उनके परिवार की ओर से, जगजीत सिंह की आवाज में, चिट्ठी ना कोई संदेश।

दोस्तों जगजीत सिंह की आवाज का ब्यूटीफुल चिट्ठी ना कोई संदेश गजल आपने सुना, जिसकी फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान, जबीदा खान उनके परिवार, साथ में मेनली वैसे वहाँ विनम से लक्ष्मी और उनके परिवार की ओर से इस गीत में उन्होंने आज याद किया था प्रभा मिश्रा को, जो आज हमारे साथ नहीं है। जी हाँ, सभी के लिए बहुत ही इमोशनल समय है, क्योंकि बहुत ही जाने माने, बहुत ही अच्छी अनाउंसर थी, लास्ट राइड ऑफ विस्पानी की भी अनाउंसर थी। चलते हैं हमारे पास जो अगला फरमाइश आई है सैक्रामेंटो यूएसए से विजन की ओर से। विजन, चलते हैं आपके लिए आपके फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।

0: आदर सुपरमा शहीदी हमारे पास इस गीत के लिए वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए से विजयन की ओर से।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804।
3: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ। वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस।
0: चलते हैं दोस्तों, देखें हमारे पास एक और गीत की फरमाइश है, और फरमाइश है एक गीत के लिए दो लोगों की तरफ से हमारे पास एक ही गीत की फरमाइश है। ये हम चलते हैं वहाँ मेलबर्न की ओर, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की खबर।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com।
0: चलते हैं मेलबर्न की ओर दोस्तों। मेलबर्न से हमारे पास फरमाइश है अल्फ्रेडो किरण प्रसाद की ओर से। याद कर रहे हैं आज श्रद्धांजलि गीत में प्रभा मिश्रा को, साथ साथ में हमारे पास यही गीत की, उसी गीत की फरमाइश है पंडित आनंद शर्मा उनके परिवार की ओर से, और इस गीत में वो याद कर रहे हैं आज प्रभा मिश्रा जी को।

मुकेश की आवाज में आपने सुना दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं का, जिसकी फरमाइश आई थी हमारे पास यहाँ पंडित आनंद शर्मा उनके परिवार की ओर से, और साथ साथ में मेलबर्न से एल्फ्रेड एंड किरण प्रसाद की ओर से आज इन्होंने इस गीत में याद किया प्रभा मिश्रा जी को। हम चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, बढ़ते हैं आज फील्ड से, और आज फील्ड से फरमाइश है हमारे पास अनवर और शहरुल की ओर से।

शलता की आवाज में फिल्म का नाम सरस्वती चंद्रा। इस गीत की फरमाइश करने वाले थे अनवर शेरुल फ्रॉम आज फिल्म। चलते हैं हमारे पास एक और श्रद्धांजलि गीत की फरमाइश है, वहाँ शिकागो से अमला सिंह की ओर से, और बहुत प्यारी सी मैसेज दिया है उन्होंने। हर कंट्रीब्यूशन टू प्रभा मिश्रा इन इंडियन कम्युनिटी विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड। आप सुनना चाहती है, चल उड़ जा रे पूछ।

0: मेरी साहब की आवाज में बहुत प्यारा संगीत चल उड़ जा रहे पंछी अमला सिंह की पसंद पर आपने सुना, और इस गीत में उन्होंने भी आज याद किया था प्रभा मिश्रा जी को।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में।
5: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
0: चलते हैं अगले गीत की ओर, हम बढ़ते हैं दोस्तों। फरमाइश हमारे पास पार्किंग सन से आशिक और आसमा की ओर से मन्ना डे की आवाज का गीत।

बहुत प्यारे सगे दोस्तों, जिसे फरमाइश करने वाले थे आसी गो आसमा फ्रॉम पार्किंग सन। और हम चलते हैं दोस्तों सैक्रामेंटो यूएसए की ओर और कामनी नारायण, वहां से अगला गीत में याद करिए प्रभा मिश्रा को। जो गीत उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उनका कहना है कि प्रभा मिश्रा लव दिस सॉन्ग, उन्हें बहुत पसंद था गीत और उन्हें वो बहुत अच्छी तरह बहुत नज़दीक से जानती थी। तो कामनी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए, हम चलते हैं सुनते हैं जो अगला गीत को उन्होंने फरमाइश किया है। वो प्रभा मिश्रा की बहुत ही फेवरेट सॉन्ग थी।

0: बीते हुए।
1: आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम दूर गगन की छाओं में, और खास फरमाइश करने वाली थी इस गीत की वहाँ कामनी नारायण जो हमें सुन रहे सैक्रामेंटो यूएसए में, और इस गीत में उन्होंने आज याद किया था प्रभा मिश्रा को। उनका कहना है कि प्रभा मिश्रा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उनके दिल के बहुत करीब था ये गीत। हम चलते हैं मेलबर्न की ओर, मेलबर्न से फरमाइश है हमारे पास शीला सिंह की ओर से।

0: दोस्तों, इस गीत के फरमाइश करने वाले थे शीला सिंह फ्रॉम मेलबर्न. आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
12: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
11: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
12: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
11: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 79.1 किलोहर्ट्ज पर. हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से. ब्रिस्बेन टाइम है हमारे स्टूडियोज में. ठीक दो बज चुके हैं दोस्तों. ये है शनिवार मस्ती म्यूजिक. आज बहुत से लोग हमारे पास कुछ अलग से फरमाइश भेज रहे हैं. खैर, कोई बात नहीं, हमेशा तो नहीं होती है. चलते हैं अगला गीत. से पहले सुनते हैं एक प्यारी सी शायरी हमारे पास है. दिल अमीर था, मुकद्दर गरीब था. दिल अमीर था, मुकद्दर गरीब था. अच्छे हम थे मगर वक्त नसीब था. अच्छे हम थे मगर वक्त बदनसीब था. कोशिश हजार की हमने संभल जाने की, कोशिश हजार की हमने संभल जाने की, पर हर रास्ता जैसे दर्द के करीब था. घर भी जलता रहा खामोश धुएं की तरह, घर भी जलता रहा खामोश धुएं की तरह, और बुझाने को समंदर भी नजदीक करीब था. और हम चलते हैं अगला गीत की ओर. हम बढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पर जोनी और सविता हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं केड्रोन पार्क में. और अगला गीत में उन्होंने भी आज याद किया है प्रभा मिश्रा जी को. श्रद्धांजलि गीत सुनना चाहते हैं तो आपके लिए रहे ना रहे हम.

बहुत प्यारे से गीत लता जी की आवाज का गीत और जिसे फरमाइश करने वाले थे जोनी और सविता फ्रॉम केडरन पार्क, प्रभा मिश्रा को याद करते हुए हम चलते हैं अगली गीत की ओर, हम पढ़ते हैं। और अगला गीत भी हमारे पास है, प्रभा मिश्रा जी को याद कर रहे हैं वहाँ बेंगस्टा ग्रीन एक सिडनी से रचिन और मालती प्रसाद, आप दोनों के लिए अगला गीत।

मिनिस्ट्री ने कहा सिडनी से इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई थी और इस गीत में उन्होंने याद किया था हमारा चिन्ह मालती प्रसाद प्रभा मिश्रा को एक बार फिर। और प्रभा मिश्रा की याद में हमारे पास अगला गीत की भी फरमाइश आई है रेड बैंक के गीता और गंगा की ओर से।

बोलो सोना, कल तक बहुत हीरो बनत रहा ना, अब का हुआ? एक नजरिया में चुप समझदार किद।

गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया USA. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701 है शनिवार मसी म्यूजिक.

love somehow. DJ Lakhan Bhai from Assam. DJ Remix. New Star.

चलते हैं दोस्तों, हमारे पास अगला गीत के लिए जो फरमाइश है वो फरमाइश है राखी पर है। और आज राखी पर अपने प्यारे प्यारे भैया को किसने याद किया है? जी हाँ, आलिया जो वहाँ रहती है 8 Miles Plains में, अपने भैया को राखी पर बहुत सारे से प्यार भेज रही है। उनके भैया जोश, ईथन और छोटे से भैया वीर को कहते हैं हैप्पी राखी भैया जी। चलते हैं आप सभी के लिए अगला गीत।

राखी पर बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना और हमारे साथ शामिल हो गए थी इस राखी गीत पर छोटी सी आलिया जो हमें सुन रही है 8 miles प्लेन्स में। और आलिया ने इस गीत को डेडिकेट किया था अपने भैया जोश ईथन और अपने प्यारे से छोटे भाई वीर को। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।

0: और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में तीन ही बचने वाले हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर योर बेस्ट बिग फीडबैक टुडे। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर फीडबैक। और चलते चलते हम यही कहना चाहते हैं, एंजॉय वीकेंड जो कुछ आप कर रहे हैं, वन नाइस लवली वीकेंड। और हमारी अगली मुलाकात है टुमारो संडे को 2:30 से। और आप अपना ख्याल रखें। नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में
6: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।
7: Hi, this is Amitabh Bachchan, aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers, and aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi, this is Salman Khan, aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: Hi, this is Deepika Padukone, aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, main hoon Tulsi Kumar, aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani se.
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो।
15: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
16: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
15: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस। और तो और, कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
16: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
15: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यानी कि 132268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। Queensland सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, authorized by the Queensland government।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन प्रॉफिट।

पाल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी। सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
1: ओके
0: तुम आ रही हो?
1: मैं जाऊं। लगता है रूम में रह गई।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम्हारी मैं जाऊं। लगता रूम में रह गया।

0: नजर से उतर गए।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: वीकेंड
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपके जिंदगी में आ गए हैं ये वीकेंड। वैसे ये वीकेंड भी बड़ी अजीब चीज है दोस्तों। देखिए ना, ना तो ये ऊपर वाला हमारी जिंदगी में डालता है और ना ही हमने भरे हैं। ये वीकेंड तो बॉस बस किस्मत में आ गए। और इन वीकेंड की वैल्यू जो है वो उस बंदे को पता है जो पूरे 5 दिन काम करने के बाद इन वीकेंड्स का इंतजार करता है। जी हाँ, और जब ये वीकेंड जिंदगी में आते हैं तो डेफिनेटली जिंदगी हसीन, खूबसूरत और मजेदार लगती है। मतलब दिल करता है कि यार कुछ ऐसा समय जो हम अपने साथ बिता सकें, कुछ ऐसा समय जो हम अपने लिए जी सकें, कुछ ऐसा जो हम खुद के लिए कर सकें, तो कितना इंटरेस्टिंग हो। तो आज फिर से अगर आपको इंतजार था अपने वीकेंड्स का, तो लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये वीकेंड आपके जिंदगी में आ गए हैं। सैटरडे और संडे अब आपके हाथ में है, और सैटरडे आपके वीकेंड की शुरुआत वाला दिन लेकर सताक्षी आपके साथ है। जी हाँ, ये दिन आप अकेले नहीं गुजारने वाले हैं, ये दिन आप गुजारने वाले हैं मेरे साथ, क्योंकि ये वक्त है सैटरडे डिलाइट का। तो आइए अपने सफर को और भी खास बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। सैटरडे डिलाइट में ढेर सारे गानों को एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते हैं कुछ बेहतरीन बातों को भी, क्योंकि ये बातें हैं फुर्सत की, ये बातें हैं अपनी और ये बातें हैं अपने खास लम्हों की। आइए इन बातों के साथ आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ भी। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

सैटरडे डिलाइट आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर, आपके फुर्सत के लम्हों को और भी खास बना रहे हैं। वैसे वीकेंड की असली वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा और हमेशा कहती हूँ कि उस बंदे को ही पता होती है जो एक्चुअली वीकेंड जीता है, जिनका इंतजार करता है, जीना उसी को कहते हैं ना कि यार मंडे से जो शुरुआत हुई काम की, इतना मर खप गए और इंतजार कर रहे हैं कि कब जिंदगी में सैटरडे आएगा। तो असली वैल्यू जो है वो सैटरडे संडे की, वीकेंड्स की, उसी बंदे को पता है जिसने लग कर अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत की हो, है ना। और जब वो खुशनुमा पल आते हैं जिंदगी में तो मन करता है कि यार अब सब भूल जाना है, इस वक्त तो सिर्फ ये याद रखना है कि जिंदगी के ये लम्हे बहुत ही खास और हसीन है। तो चलिए इन लम्हों के नाम फिलहाल एक और ट्रैक को एंजॉय कीजिए मेरे साथ, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी सताक्षी के साथ। आप सुन रहे हैं Saturday Delight।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: सैटरडे डिलाइट पर सताक्षी का ये साथ है आपके साथ। जी हाँ, आपके वीकेंड्स कैसे गुजर रहे हैं? मजेदार? देखिए अगर मजेदार नहीं है तो हम बनाएंगे ना उनको मजेदार, आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी। आपके हर एक लम्हे को जब तक आप सताक्षी के साथ हैं हम बेहतरीन बनाते रहेंगे। फिलहाल अपने लम्हों में रंग भरते हैं, अपने वीकेंड्स में रंग भरते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, एंजॉय करते रहिए मेरे साथ सैटरडे डिलाइट।

सो सो सो सो क्या प्रोग्राम है इस वीकेंड आपका भाई? कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम बनाया होगा ना कुछ तो खास करने का सोचा होगा। बहुतों ने सोचा होगा कि लाइफ पार्टनर के साथ कुछ तो टाइम स्पेंड कर लिया जाए यार। कब से बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हमने साथ नहीं गुजारा है। कुछ ये भी सोच सकते हैं कि यार पेरेंट्स से मिल लिया जाए, बहुत परेशान रहते हैं वो मिलने के लिए। कुछ देर बातें उनके साथ की जाए बैठ के, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने उन्हें छोड़ सा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बहुत बिजी हो गए जिंदगी की भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों में। अगर उनके साथ बैठेंगे तो फिर उनका ख्याल कैसे रख पाएंगे? लेकिन क्योंकि वीकेंड्स हैं हमारे पास, तो उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ बातें की जाएं। कुछ सोच रहे होंगे कि चलो किसी के घर घुमाते हैं, बहुत वक्त से गेट टुगेदर्स नहीं हुए हैं, मिले नहीं हैं दोस्तों से, यारों से, तो मुलाकात हो जाए। अलग अलग प्लानिंग्स होती हैं सबकी। आपकी क्या खास प्लानिंग्स हैं? क्या खास करने वाले हैं इस वीकेंड? या फिर सिर्फ सो कर इन 2 दिनों को गुजारने वाले हैं, कुछ खास नहीं करने का सोचा है? देखिए, जरूर वीकेंड्स हैं और जरूर आपको आराम करना है, अपनी बॉडी को भी आराम देना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो जिम्मेदारियों से अलग होना चाहिए, जरा अलहदा होना चाहिए रोज की लाइफ से, ताकि आप उसके साथ पूरे हफ्ते रिफ्रेश रह सके। तो सोचिए, फटाफट से प्लान कीजिए क्या करना है इन 2 दिनों में और कैसे गुजारने हैं अपने वीकेंड्स। मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो क्रिस्वानी, सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट।

देखिए कहते हैं म्यूजिक भी आपका दिन बना देता है ना, और इसीलिए सैटरडे डिलाइट में मैं लेकर आती हूँ आपके लिए बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक। ये म्यूजिक आपको चिल करता है, आपको रिलैक्स करता है, आपके चेहरे पर एक बढ़िया से स्माइल लाता है और आपको बताता है कि आप सताक्षी के साथ हैं। तो मेरा आपके साथ साथ जो है ये यूं ही बना रहेगा। सैटरडे वाला म्यूजिक आप एंजॉय करते रहिए मेरे साथ, अपने हसीन लम्हों को और भी खास बनाते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी 1701 FM।

अच्छा, आपसे एक सवाल करूं ना? देखिए, रोज तो आप बिजी होते हैं, आज वक्त मिला है तो कर लेते ना सवाल जवाब ना। मुझे ये बताइए, देखिए आज सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी, आपको जो भी सवाल करने हैं आप फरमाइशी गीतों में करिएगा मुझसे। अच्छे से अपने मेल्स मुझे भेजिएगा, अभी मेरी बारी है। तो मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, जल्दी से फटाफट से रेडियो प्रस्वानी पर हमारे फेसबुक पेज पर हमें बताइए कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है। जानती हूँ सवाल बहुत मुश्किल है, और मुझसे अगर ये सवाल किया जाए तो मेरा जवाब क्या होगा, क्या होगा? देखिए, अगर सुकून के पल बिताने हैं, कुछ सुकून भरा सुनना है, तो मुझे लगता है कि लता जी के गाने, हाँ वो एवरग्रीन है, उनके गाने सुकून भरे हैं। तेरा मेरा प्यार अमर, आय हाय सुन के ना मजा आ जाता है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये कुछ ऐसे गाने हैं, कितने सॉफ्ट म्यूजिक है कि दिल झूम जाता है। थोड़े शरारत भरे गाने सुनने हो तो किशोरदा है, और अगर आज का म्यूजिक सुनना हो तो जो भी नौटियाल और अरिजीत सिंह है ना, मतलब जैसा मूड वैसा म्यूजिक और वैसे सिंगर्स के साथ ये डेवलप होता रहता है। रफ़ी साहब, सुकून भरे गाने अगर सुनने हो तो जी लता जी के साथ मैं रफ़ी साहब को भी सुनना नहीं भूलती हूँ। आप भी बताइए ना आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं, जल्दी से फटाफट से हमें बताइए। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी, आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ सैटरडे डिलाइट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: स्टार्टेड पर सताक्षी का साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर. आपके हसीन और खूबसूरत लम्हों को और भी खास बना रहे हैं हम हमारे इस सफर में. आई रियली होप कि आप भी इन लम्हों को अपने अपनों के साथ तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन सताक्षी के साथ भी अपने वीकेंड को और भी खास बना रहे हैं. तो ये वीकेंड सॉफ्ट म्यूजिक, चिल वाला म्यूजिक के साथ आगे बढ़ता रहेगा. इंजॉय करते रहिए मुझे और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी 1701 एम.

0: अपुआ गायन तो जबरदस्त हिट छे।
1: पर जमाना है आज टेक्सटिंग का, मतलब कॉल कम करते हैं, टेक्स्ट ज्यादा करते हैं, मैसेज पे बात हो जाती है। और मैंने कई बार जब मैसेज पे बात होती है मेरी किसी से, तो मैंने एक चीज रियलाइज की है, मैसेज एक रिटन फॉर्मेट है अपनी बात को कहने का, और वो कभी भी आपके इमोशंस को बयां नहीं करता है। करता है क्या? नहीं। और इसीलिए मैसेज पे कई बार आप जो कहना चाहते हैं वो बात ना पहुंच के इंसान उसका दूसरा मतलब निकाल लेता है, और इस वजह से कई सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। आप कहना तो अच्छा चाहते हैं, इंसान को लगता है कि आप गलत कह रहे हैं। इसलिए कई गलत फहमियां अगर आपके बीच हैं आपके अपनों को लेकर, तो उन्हें दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका वीकेंड होता है, क्योंकि रोज तो वक्त नहीं मिलता है, लेकिन अपने वीकेंड पे आप अपनों को कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट छोड़िए और फोन करिए, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का फोन कॉल जो है वो कई गलत फहमियों को दूर कर देता है, आपको अपनों के और भी करीब ले आता है, नजदीक ले आता है, और वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या जो सारे किले शिकवे हैं वो भूल कर अगर बात अपनों की हो तो कॉल करने से पीछे मत हटिए। ठीक है जी, फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और गाने को एंजॉय कीजिए मेरे साथ, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी 1701 AM।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सदाक्षी के साथ ये साथ है सैटरडे का। जी आइए, साथ है आपके वीकेंड का, और इसी साथ को आप इस वक्त मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रिस्मानी 1701 AM पर। कई खूबसूरत बातों के साथ मैं सफर को आपके साथ आगे लेकर चल रही हूँ, और ये खास बातें जो हैं हमारी, आपकी, हमारे वीकेंड वाली बातें जो है वो जारी रहेंगी आगे भी। कुछ अपनों का प्यार है इस वक्त हमारे साथ, कुछ आनस है इस वक्त हमारे साथ जो रोज दिखाने का मौका नहीं मिलता है, और कुछ है ये बॉलीवुड के बेहतरीन गाने जो हमारे फेवरेट हैं और हमारे इस पल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो ये साथ और बातें तो जारी रहेंगी हमारी आगे भी, लेकिन ये ट्रैक जो है इसका इंतजार क्यों करना, इसे भी सुनिए और बने रहिए मेरे साथ रेडियो प्रिस्वानी पर।

कई बार दिल में ये सवाल आता है कि अपने वीकेंड को और भी बेहतरीन अपने लिए कैसे बनाया जा सकता है, अपने वीकेंड को और भी पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है और एनर्जी कैसे ली जा सकती है। देखिए, वीकेंड्स पे नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें पता है कि यार हमारा दिन है, छुट्टी का दिन है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा देर तक सोना प्रेफर करते हैं। लेकिन वीकेंड एक ये टाइम भी होता है जो आप रोज़ अपने आप को नहीं दे पाते हैं, वो टाइम जो है वो आप खुद को दे सकते हैं। कोशिश कीजिए छोटे छोटे टास्क को फॉलो करने की। लाइक वीकेंड आते ही मैं देखती हूँ सबकी डाइट अनफॉलो हो जाती है, वैसे तो नॉर्मली रहती है, आप कुछ भी खा पी लेते हैं, है ना, क्योंकि जल्दी रहती है, भाग दौड़ रहती है, घर से बाहर भी कुछ कई बार खा लिया। कोशिश कर सकते हैं कि वीकेंड पर कम से कम अपनी डाइट को फॉलो करें। कोशिश कर सकते हैं कि रोज़ तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, इतनी भाग दौड़ रहती है, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि यार वक्त नहीं मिलता है, लेकिन वीकेंड पे ये बहाना ना बनाए तो अच्छा है। एटलीस्ट सैटरडे संडे तुम अपनी हेल्थ को दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं, अपनी फिटनेस को दे सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठिए और अपने हिसाब से छोटे छोटे से टास्क बना लीजिए और उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी हो सकते हैं, मॉर्निंग में वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, जिन दोस्तों से नहीं मिले उनसे मिलना, कुछ भी, अपने पार्टनर को सरप्राइज देना, कुछ भी छोटे से टास्क जो आप कंप्लीट कर सकते हैं और उनके साथ अपने वीकेंड को आप यादगार और पावरफुल बना सकते हैं। तो सोचिए मेरी बात को, मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: जिंदगी की भागदौड़ में वीकेंड वो ब्रेक है जो खुद से मिलने का मौका देता है। आई होप कि आज आप भी खुद से मिल रहे होंगे। क्या चाहिए, क्या है जरूरतें, किस ओर भागना है, कैसे सपने पूरे करने, बहुत सारी चीजों पर ध्यान ले जाने के लिए हमारे वीकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके वीकेंड्स को हम और भी खास बना रहे हैं। भाई ज्यादा मत सोचिए, थोड़े गाने भी इंजॉय करते रहिए हमारे साथ। जी हाँ, क्योंकि खुद से मिलने का मौका, जैसा कि मैंने कहा, वीकेंड है तो गाने भी दंश आपको आपसे मिलवा देते हैं। इसी बात पर एक अगला ट्रैक आइए मिलकर साथ सुनते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर आपके वीकेंड्स को आप सताक्षी के साथ खास बना रहे हैं। जी हाँ, सैटरडे डिलाइट इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप गाने सुनते हैं तब तक मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, मतलब क्रिएटिव दिमाग है बॉस मेरा। मैं सोच रही थी कि क्या हो अगर वीकेंड पार्टी पर आपकी मम्मी यानी कि आपकी माँ बन जाए डीजे, कौन सा गाना आप सुनेंगे या कौन सा गाना वो आपके लिए प्ले करेंगी, सोचा है कभी? अच्छा, क्या हो जब आपका बॉस आपसे कहे कि आज तो भैया हेलीकॉप्टर पे मीटिंग होगी और वो हेलीकॉप्टर मीटिंग जो है वो संडे को अनाउंस कर दी जाए, या सैटरडे आपके वीकेंड्स वाले जो दिन हैं उन पर अनाउंस कर दी जाए, क्या करेंगे आप और कैसा होगा आपका रिएक्शन? सोच में पड़ गए ना? तो सोचिए नहीं, हमें बताइए हमारे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज पर। मैं प्ले करती हूँ जब तक आप ये सोचते हैं अगला ट्रैक आपके लिए। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट। आपकी सताक्षी है दोस्तों आपके साथ।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सैटरडे पर सताक्षी की बातों का खास सफर सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। ये लम्हे जो बहुत खास हैं आपके लिए, उन्हें हम आपके लिए खास बनाते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी, आपके वीकेंड वाले शो सैटरडे डिलाइट के साथ।

स्टार्टेड टू डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो बरसवानी 1701 एम पर आपकी सताक्षी के साथ। वीकेंड का मतलब ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा मजा, अपना खुद का वक्त और ढेर सारा एंटरटेनमेंट। हाँ हाँ, वो एंटरटेनमेंट अपनों के साथ एक बढ़िया सी ट्रिप के साथ हो सकता है, या फिर हो सकता है एक अच्छी सी मूवी को एंजॉय करते हुए, भले ही आप थिएटर में जाके एंजॉय करें या ओटीटी पर एंजॉय करें। आज तो बहुत सारे सोर्सेज हैं अपने वीकेंड्स को खास बनाने के लिए, लेकिन ऐसा ही सोर्स हम भी हैं। जी हाँ, क्योंकि रेडियो बरसवानी आपके वीकेंड को खास बनाने में कोई कसर तो बाकी छोड़ता नहीं है। और इसी कड़ी में आइए आगे बढ़ते हैं एक और बढ़िया से गाने को एंजॉय करते हुए, जो इस वीकेंड को और भी खास बना देगा। कीप लिसनिंग टू रेडियो बरसवानी, एंजॉय करते रहिए मेरे साथ सैटरडे डिलाइट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी हाँ, कुछ बातें हैं बहुत ज़रूरी होती हैं कहनी, और आज वीकेंड का ये शो जो है ये अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके पहले कि आज इसे वाइंड अप करने की बात आपसे करूं या इसे वाइंड अप करूं, चलते चलते ना एक बढ़िया सी बात आपसे कहना चाहती हूं। देखिए, जिंदगी जो है वो बहुत भाग दौड़ रही है, जानती हूं, बहुत आगे हमें जाना है, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे सपने हैं, हमारे भी, हमारे अपनों के भी, जिन्हें हमें पूरा करना है, मैं जानती हूं। लेकिन जिंदगी में ठहरना भी उतना ही ज़रूरी है जितना चलना ज़रूरी है। चलते क्यों हैं? ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और ठहरते क्यों हैं? ताकि अपने थके हुए कदमों को आराम दे सकें, थोड़ी राहत फील कर सकें, थोड़ा जो थकान हो गई हम उसे उतार सकें। और ये वीकेंड इसलिए ही आते हैं ताकि आप थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा ठहरें। इन वीकेंड्स पर ना तो सपनों को याद करें, ना भारी भरकम जिम्मेदारियों को याद करें। याद रखें तो सिर्फ इतना कि आप खुद के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है जी। और खास आपके नाम ये अगला ट्रैक भी है, इसे सुनिए और सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट में बने रहिए।

सो फ्रेंड्स, ये सैटरडे डिलाइट का आज हमारा आपका एक और साथ था। आज हमने फिर से कुछ बात की जिंदगी की, कुछ बात की अपने वीकेंड्स की, अपनों की, अपनी मस्ती की, मौज की। आई होप कि आपको ये सफर जरूर पसंद आया होगा। और थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी ना कि रुकना भी जरूरी है, तो ये वही पड़ाव है जहां अब इस हफ्ते हमें रुकना होगा, ठहरना होगा। आपसे मुलाकात होगी कल फरमाइशी गीतों में। तो बस कल मिलने के वादे के साथ आज लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: suku, suku.
1: Ay, ay, ay, करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on...
2: Tal event Shan ke saath pesh karta hai Grand Bhajan Night. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452584926। ग्रैंड भजन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Jeet gaye. Hum jeet gaye.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Leia Suco Suco!
1: Ai, ai, ai, करूं मैं क्या सुकू सुकू ai ai

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664433।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452 584 926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Priya, next month mama ka birthday. Soch rahi ho, unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do. Jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
2: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
1: Acha? Wo kya?
2: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho. Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
1: Lekin mama ke liye money lene kahin door jana possible nahi hoga.
2: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें
3: दुनिया के किसी भी कोने में रहा तुमसे कितना भी फासला रहा यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: लगता रूम में रह गया।

0: साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273736।

चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्निहा सनिधम कुरु। ओम नमः शिवाय। हरि ओम भक्तजनों, आज एक बार फिर से भक्ति सागर के पावन सफर में मैं सताक्षी भक्ति की राह पर आपके साथ चलने के लिए हूँ आपके साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। चलिए इसी पवित्र श्लोक के साथ शुरू करते हैं भक्ति का अलौकिक सफर। भक्ति

भक्तजनों, हम देवी के कई रूपों को जानते हैं, पर क्या आपने माँ शाकंभरी की कथा सुनी है, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और चारों ओर हाहाकार मच गया? जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार जब महिषासुर नाम के दैत्य ने वेदों को चुरा लिया, तब धरती पर भीषण अकाल पड़ा। समस्त जीव जंतु पशु पक्षी प्यास और भूख से मरने लगे। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर देवी की कठोर तपस्या की। देवी ने जब धरती के जीवों के कष्ट देखे तो उनकी आंखों से निरंतर अश्रु धारा बहने लगी। उन्हीं आंसुओं से धरती के सभी जल स्रोत भर गए। उन्होंने अपने शरीर से फल सब्जियां और अन्न उत्पन्न करके सबका पालन किया। इसी कारण उन्हें शाकंभरी देवी कहते हैं। वैसे शाकंभरी देवी का एक और नाम भी है, शताक्षी देवी, क्योंकि जब माँ 100-100 आंखों से रोई थी तभी जल की अनियमित धारा जो है वो बह निकली थी। तो चलिए शाकंभरी माता को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं भक्ति सागर में रेडियो प्रस्थान पर।

रेडियो प्रस्वानी सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ, और रेडियो प्रस्वानी पर इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं भक्ति के अनमोल भजन भक्ति सागर में। भक्ति का ये अलौकिक स्वरूप आगे भी जारी रहेगा। हमारे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर, और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

सुगंधिन पुष्टि वर्धनम उर्वार रुक में वो बंधनान मृत्योर मुक्षी है मामृताम। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप केवल रोग से नहीं बल्कि मन के भय से भी मुक्ति दिलाता है। इसका जाप करते हुए आइए सुनिए महादेव की अगली स्तुति हमारे साथ, और सुनते रहिए रीजु बिस्वानी पर सताक्षी के साथ भक्ति साथ।

भक्ति सागर सुन रहे हैं आप रेडियो पिस्तानी पर। भक्ति सागर में आपका साथ दे रही है सताक्षी, और हमारे और आपके साथ से मिलकर भक्ति का ये सफर आनंदमय बन गया है। तो चलिए भक्ति के सफर के साथ आगे चलते हैं रेडियो पिस्तानी 1701 पर।

शास्त्रियों, कभी आपने सोचा है कि जब भी आप शिव की आराधना करते हैं तो धूल बेलपत्र धतूरा उन्हें चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र आखिर चढ़ाया क्यों जाता है, कभी सोचा है? आपको पता है इसकी एक बेहद पावन कथा स्कंद पुराण में मिलती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव के पसीने की बूंद मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष के हर हिस्से में देवी लक्ष्मी और अलग अलग देवताओं का वास माना जाता है। इसकी तीन पत्तियां ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रतीक हैं। बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं है बल्कि आत्मसमर्पण का प्रतीक है। अपने तीन गुणों सत्व रज और तम को शिव के चरणों में अर्पित करना ही बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका है। आइए भोलेनाथ के चरणों में हम सिर्फ अपने सत्व रज और तम को ही अर्पित नहीं करते, खुद को समर्पित करते हैं। और सुनते हैं ये अगला गीत, हमारे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।

भगवान का रिश्ता कैसा होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी याद आई है। एक बार महर्षि अगस्त्य के आश्रम में सभी ऋषि मिलकर राम नाम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी वहां से गुजर रहे थे, पर उन्होंने देखा कि ऋषि केवल मुख से जाप कर रहे थे, मन में वो भाव नहीं था। हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और आश्रम के पास एक पौधे के पास बैठ गए। हर बार जब ऋषि राम बोलते, हनुमान जी उस पौधे से एक सुंदर फूल तोड़कर प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते। ऋषियों ने पूछा कि ये कौन कर रहा है? तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, जाप तभी सफल होता है जब हर सांस और विचार में प्रभु का नाम बसा हो। सिर्फ मुंह से अगर आप भी राम राम या अपने ईश को याद करते हैं तो उसका फल आपको इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आपका मन कहीं और घूम रहा है। आइए अपने मन को स्थिर करते हुए पूरी श्रद्धा से सुनते हैं ये भजन। हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

तो भक्तजनों, ये थी आज भक्ति सागर में हमारी एक अनोखी और भावमय प्रस्तुति जो हमने अपने ईश, अपने प्रभु, अपने भगवान को समर्पित की। आशा करते हैं कि आज आप भी इस पावन सफर में जीत कर खुद को धन्य पा रहे होंगे। तो बस ईश्वर से हम आपके साथ नहीं मिलते रहेंगे, ईश्वर की राह पर चलते रहेंगे, लेकिन अब आज ये वक्त है भक्ति की इस सफर की धारणा को यहीं पर थामने का, क्योंकि आपके लिए तो भक्ति का कोई अंत है नहीं। करते रहिए प्रभु की भक्ति। और मैं लेती हूँ अब विदा। जय श्री राम।

अल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट।

0: ब्रिस्बन की पहली पसंद 79.1 ब्रिस्बानी AM। यह रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: रेडियो ब्रिस्बानी 1701 ब्रिस्बन।
2: और हर सप्ताह की तरह एक बार फिर आपके खिदमत में आज सुबह के इस्लामिक प्रोग्राम।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। इसी महीने की 28 तारीख को बलराम जयंती का उत्सव मनाया जाएगा और उसी उपलक्ष में पिछले सप्ते हमने आपकी सेवा में भगवान श्री बलराम के विषय में कुछ कथा प्रस्तुत किए थे। संक्षेप में जो कथा प्रसंग था वो इस प्रकार था कि भगवान श्री बलराम कौरवों और पांडवों के मध्य में कुरुक्षेत्र भूमि पर जो युद्ध होने वाला था उस युद्ध में भाग लेने की उनकी बिल्कुल मंशा नहीं थी। इसी कारण वो तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। वे पारिवारिक झगड़ा के बीच में नहीं पड़ना चाहते थे। भगवान के इस जगत में आने का मुख्य उद्देश्य चार होता है, अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश और संत पुरुषों की रक्षा। युद्ध, विनाश, हिंसा, ये ना चाहते हुए भी धर्म की स्थापना के हेतु से कभी कभी इनका उपयोग किया जाता है। और जब पांडवों और कौरवों के मध्य में ये युद्ध की चर्चा हो रही थी उस समय कृष्ण ने भी कहा था कि वे युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो स्वयं युद्ध नहीं करेंगे, परंतु वे अर्जुन का रथ चला सकते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने मगध के राजा जरासंध जैसे कई दुष्टों के साथ युद्ध किया था। उन युद्ध में उन्होंने शस्त्र भी उठाए थे, परंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बलराम ने भी इनकार करके वहां से प्रस्थान कर दिए तीर्थ करने के लिए। तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों भगवान होते हुए और दोनों का इस जगत में आने का हेतु अधर्म को विनाश करने का हो तो कोई पूछ सकता है कि क्यों इस युद्ध में वे अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं करना चाहते थे। बहुत प्रयास भी किया गया था कि ये युद्ध ना हो, और फिर भी जब युद्ध निश्चित हुआ तो बलराम चले गए युद्ध में भाग ना लिए और कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के रथ के सारथी बन गए ताकि उन्हें स्वयं कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग ना करना पड़े। इस संदर्भ में हमें यह जानना आवश्यक है कि धर्म को स्थापित करने के लिए जब कभी भी युद्ध आवश्यक पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा भगवान स्वयं ही युद्ध करेंगे। कभी काल वे योग्य व्यक्ति का उपयोग करते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और उन्हीं से युद्ध कराते हैं। बलराम का भी इस युद्ध में भाग न लेने का अर्थ ये नहीं कि वे धर्म स्थापना से अपना मुंह मोड़ लेंगे। जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा धर्म की स्थापना करवा रहे थे उसी समय अन्य और स्थानों में धर्म स्थापना के इस लक्ष्य को भगवान श्री बलराम ने निभाया। और हमें यह भी याद रहे कि धर्म की स्थापना के भी कई अंग होते हैं, केवल युद्ध नहीं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की स्थापना, धर्म क्या है वो भगवान स्थापित करते हैं। भगवत प्रणीतम, भगवान की प्राप्ति के हेतु भगवान के द्वारा संबोधित जो भी कार्य किए जाते हैं उसी को धर्म कहते हैं। अर्थात जिस कार्य में भगवत प्राप्ति का हेतु ना हो वो तो अंत में अधर्म ही होता है। जिस प्रकार कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म के हेतु दिव्य ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो धर्म की स्थापना के हेतु सबसे पहला अंग है ये दिव्य ज्ञान। यदि हम समाज को दिव्य ज्ञान में शिक्षित ना करेंगे तो धर्म स्थापित होने की तो संभावना ही नहीं है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह पहला अंग जो है दिव्य ज्ञान, उसे हमें प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना होगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाना होगा। तो धर्म स्थापन का यह सबसे प्रथम अंग है दिव्य ज्ञान, जिसे हमें प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना होता है। तो शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री बलराम जो श्री कृष्ण भगवान के सबसे पहले विस्तार हुए वही आदि गुरु है, और जिसे हम गुरु तत्व कहते हैं वही बलराम है। गुरु हमें दो प्रकार से शिक्षित करते हैं, एक दिव्य ज्ञान से और दूसरा अपने आचरण से। जब किसी को सचमुच में दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है
तो वो दिव्य ज्ञान उस व्यक्ति के कार्यों में प्रदर्शित होता है। इस जगत का ज्ञान या इस शरीर के संबंधित जो ज्ञान है उसे दिव्य ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि ये शरीर और इस जगत की वस्तुएं दिव्य नहीं है। यहां इस जगत में यदि कुछ दिव्य है तो वो है ये जीवात्मा, भगवान, भगवत नाम, भगवत सेवा और वो कार्य जो जीवात्मा और भगवान को अपने वास्तविक स्वरूप में मिला सके। इसी जगत में सभी जीवात्माओं को बलराम जी से स्वयं सीख लेनी चाहिए कि भगवत समर्पित जीवन कैसा होना चाहिए। स्वयं भगवान के कई अवतार और विस्तार है, परंतु जो आदि स्वरूप है भगवान का, जो सभी और स्वरूपों के भी कारण है, उसे ब्रह्मा जी ने घोषित किया है कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण वो आदि पुरुष श्री कृष्ण है और उनके सबसे पहले विस्तार बलराम जी है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम, के सभी अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण है और बलराम उनका द्वितीय देह है, उनका दूसरा स्वरूप। तो प्रथम स्वरूप है कृष्ण और द्वितीय स्वरूप है बलराम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विस्तार दो प्रकार के होते हैं, एक है स्व अंश और दूसरा है विभिन्न अंश। स्व अंश भगवान के अवतार होते हैं जिनमें भगवान की सभी दिव्य शक्तियां होती है, वो भगवान से भिन्न नहीं होते। तो बलराम श्री कृष्ण के स्व अंश है, वो उनका ही विस्तार है और उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल देह के सिवाय। कृष्ण श्यामल रंग के हैं और बलराम स्वेद रंग के हैं, सफेद। तो ये है भगवान के स्वांश विस्तार। फिर भगवान के विभिन्न अंश विस्तार होते हैं, जो कि जीवात्मा है, जो स्वयं कभी भगवान नहीं बन सकते परंतु भगवान के अंश के रूप में सदा रहते हैं। उनमें भगवान जैसी शक्तियां होती है परंतु मात्रा बहुत कम, और अपने जीवन के लिए वे स्वयं भगवान कृष्ण और उनके स्वांश विस्तारों पर निर्भर होते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, भगवान और जीवात्मा दोनों नित्य है, दोनों सचेत है, परंतु विभिन्न नित्य एक नित्य पर निर्भर है। अर्थात जितने विभिन्न अंश है वो स्वांश के ऊपर निर्भर रहते हैं, यही वेद का कठन है। ये विभिन्न अंश या समस्त जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, हमेशा स्वांश के अधीन होते हैं। तो जितने विभिन्न अंश है वह स्व अंश के अधीन होते हैं। अर्थात जितने जीवात्माएं हैं, जितने जीव जंतु हैं, जो भगवान के अंश है, वो सदा भगवान पर ही निर्भर होते हैं। भगवान का अंश होने के कारण उनमें भी अल्प स्वतंत्रता है, परंतु पूर्ण स्वतंत्रता कभी नहीं होती है। जिस प्रकार एक राज्य में रहने वाले लोग स्वतंत्र होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु राज्य के कानून के अंतर्गत कर सकते हैं, और यदि वो राज्य के कानून का उल्लंघन करना चाहे तो उसको स्वतंत्रता है, वो उल्लंघन भी कर सकते हैं, परंतु परिणाम भोगने के लिए उन्हें सज्ज होना पड़ेगा। कानून के उल्लंघन करने वालों को बंदीगृह में रखा जाता है, वहां भी स्वतंत्रता है परंतु बहुत ही सीमित है, उतनी नहीं है जितनी जेल के बाहर है। जेल के बाहर और जेल के अंदर भी दोनों जगह पर हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम राज्य के अंदर रहते हैं और उसी राज्य का कानून अंदर या बाहर दोनों जगह पर हमारे ऊपर लागू होता है। तो विभिन्न नामश या जीवों में कुछ न कुछ थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है, इंडिपेंडेंस होता है, परंतु वो इंडिपेंडेंस भी भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हम पूरी तरह से कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, केवल भगवान के स्वरूप होते हैं जो उनके विस्तार होते हैं, जिसे हम स्वांश कहते हैं या अवतार कहते हैं, वे ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। परंतु वे स्वतंत्र होते हुए भी जो स्वयं भगवान है उनके सेवक बनकर रहते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण स्वयं भगवान के एक अवतार होते हुए भी भगवान श्री राम के सेवक बनकर आते हैं,
और कई प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं अपने पूज्य श्री राम को, तो उसी प्रकार बलराम भी श्री कृष्ण के एक स्वांश अवतार है, सर्वप्रथम अवतार है, और उसे गुरु तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भी दिव्य ज्ञान के स्वरूप होते हुए अपने आप को स्वयं भगवान का सेवक मानते हुए कई प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की सेवा में लगते हैं। दिव्य ज्ञान का अंतिम निचोड़ है जीवेर स्वरूप होए कृष्णर नित्य दास, कि हम सब भगवान के सेवक है, यही दिव्य ज्ञान है। और जब कोई ये समझ लेता है कि वे भगवान के सेवक है और इस समझ के अनुसार फिर वो सेवा में लगता है, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। वो अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो गया है और ये सेवा निस्वार्थ भाव से करने से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। और जब सच्चा दिव्य प्रेम किसी को भगवान पर हो जाता है तो वो अपने प्रेमी के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता है, वो स्वतंत्र नहीं होना चाहता है, वो सेवक बनकर सेवा में रहना चाहता है। जिस प्रकार लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी राम से अलग नहीं रहना चाहते थे, तो बलराम जी अपने ही उदाहरण से, अपने ही कार्यों से ये उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि जिसके पास दिव्य ज्ञान हो जाता है, जिसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, वो सेवा करना चाहेगा और सेवा के बिना अपने जीवन को निरर्थक समझेगा। जिस प्रकार गुरु अपने ही जीवन के उदाहरण से शिष्य को शिक्षा देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री बलराम अपने ही उदाहरण से ये शिक्षा देते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, किस भाव से करनी चाहिए। हां, सेवा में हम उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते, फिर भी भाव कैसा होना चाहिए, वो सब अपने उदाहरण से हमें शिक्षित करते हैं। श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कई रूप धारण करते हैं। छत्र पादुका शैया उपधान वसना आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासना, अर्थात वो कृष्ण की सेवा करने के लिए इन रूपों को धारण करते हैं। छत्र, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, आराम करने का स्थान, निवास स्थान, यज्ञोपवित तथा सिंहासन, ये सब बलराम जी के अनेकों रूप है जिसके द्वारा वो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जो छाता या छत्र उपयोग में लाए जाते हैं, उनकी पादुका, उनकी शैया, तकिये, वस्त्र, सिंहासन, निवास स्थान, ये सब बलराम जी से विस्तृत होते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण के संबंधित ये वस्तुएं भी पूजनीय है, क्योंकि वो बलराम के ही विस्तार है। एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाणा शेष नाम धरे। इस बलराम को शेष भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण सेवा के परम शिखर को प्राप्त किया है। कृष्ण सेवा के लिए वे कई रूप धारण करते हैं और इस प्रकार गुरु बन के भगवत सेवा कैसे की जाए, वो शिक्षण अपने ही चरित्र, अपने ही कार्य, अपने ही उदाहरण से देते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री बलराम का ये शेष रूप है जो कि विष्णु की सेवा में लगते हैं। पिछले वेदवाणी कार्यक्रम में हमने दर्शाया था किस प्रकार भगवान श्री बलराम रोमहर्षण सुत का वध करते हैं एक घास के तृणके से। इस घटना से, इस लीला से उन्होंने दर्शाया कि व्यास आसन पर बैठने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए। जितना अधिक मात्रा में दिव्य ज्ञान गुरु के पास हो, उतना ही अधिक वो विनम्र रहेगा। यदि कोई धर्मपरायण होने का स्वांग रचते हैं और उनमें धर्मपरायण होने के गुण ना हो, तो भगवान भी उसे वध के योग्य समझते हैं। जो गुरु होने का ढोंग कर रहे हो, उसे आदि गुरु तत्व बलराम जी बिल्कुल सहन नहीं करते, क्योंकि आम जनता को सत्य मार्ग दर्शन देने के स्थान पर वे इन्हें भक्ति के मार्ग से भटका देते हैं। ऐसे कहलाए हुए गुरु के अनुचित उदाहरण को लोग धर्म समझने लगते हैं, यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। भगवान श्री बलराम के इस रोमहर्षण सुत का वध करने की लीला से यह भी सीख मिलती है कि जो गुरु होने का स्वांग रचते हैं,
वो स्वयं अपने जीवन की आयु घटा देते हैं। उस पर आयुष्मान होने का वरदान भी काम नहीं करेगा। अनेकों आचार्यों द्वारा एक और बात भी इस घटना पर समझाई गई है। यूं तो भगवान स्वतंत्र होने के कारण जो चाहे कभी भी वो कर सकते हैं बिना किसी के अनुमति के, और क्योंकि वे पुण्य और पाप के श्रेणी से परे हैं, उनके कार्य दिव्य कहलाते हैं, और उनके कोई भी कार्य चाहे किसी की हत्या करे या किसी को वरदान दे, ये दोनों का शुभ परिणाम ही होता है। इसी कारण भगवान के किसी भी कार्य को हम पाप नहीं कह सकते, क्योंकि वो पाप और पुण्य की श्रेणी में आता ही नहीं है। सामान्य लोग जब पाप करते हैं तो उन्हें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि पाप का परिणाम अंततः दुख ही होता है, और ऐसे किए हुए

दुख से बचने के लिए, परंतु भगवान के लिए कोई भी कार्य के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जब उन्होंने रोमहर्षण सूतक का वध किया, तब ऋषि मुनियों ने उनसे आग्रह की कि वे प्रायश्चित करें। इस दृष्टांत को लेकर कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि देखा, भगवान भी कर्म बंधन से बच नहीं सकते, भगवान होते हुए उनको प्रायश्चित करनी पड़ती है। परंतु ऐसा नहीं है। समस्या यह है कि सामान्य लोग ऐसा सोचने लगेंगे कि प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं प्रायश्चित नहीं की। सामान्य व्यक्ति भी यदि प्रायश्चित को त्याग दे तो उन्हें तो उनके पाप कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। जन समाज कहीं ऐसा ना सोचने लगे कि ब्राह्मण की हत्या करनी कोई बड़ी बात नहीं है और कोई घोर अपराध नहीं है। ये गलत धारणा न फैलने लगे, इस हेतु से ऋषि मुनियों ने भगवान श्री बलराम को कहा कि आप प्रायश्चित अपनाइए। फिर भी जब भगवान बलराम ने उनसे कहा कि आप स्वयं मुझे कहिए क्या प्रायश्चित मुझे करनी चाहिए, तो उन्होंने दो कार्य करने का प्रस्ताव रखा। पहला, दुष्ट बलवल दानव को मारना, उस असुर का संहार करना, और दूसरा कि एक वर्ष तक वे सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करें। तो भगवान श्री बलराम ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया, बलवल को भी मार डाला और फिर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े नैमिषारण्य से। एक वर्ष तक उन्होंने कहां भ्रमण किया वो सब भागवत पुराण में विस्तार से बतलाया गया है। नैमिषारण्य के बाद वे कौशिक नदी के तट पर गए। इस तीर्थ स्थान पर स्नान करने के पश्चात वे सरयू नदी की ओर चलने लगे और उस स्थान तक भी गए जहां सरयू नदी का स्रोत है। सरयू नदी के तट पर भ्रमण करते हुए वे धीरे धीरे प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। वहां उन्होंने स्नान भी किया, स्थानीय मंदिरों में पूजा की, अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पण किया और संत पुरुषों को भी दान दिया। वो सभी प्रकार की विधि अपनाई जो वैदिक शास्त्र में दी हुई है। कुछ समय बाद वे संत पुलह के आश्रम पर पहुंचे और वहां से वे गांधाकी और गोमती नदी की ओर गए। विपाशा नदी में स्नान किया और शोना नदी के तट पर आए। ये शोना नदी भारत के बिहार प्रोविंस में एक बहुत बड़ी नदी है। उस नदी में भी उन्होंने स्नान किया और अनेकों वैदिक क्रियाएं संपन्न की। अंत में वो गया भी आए जहां एक बहुत ही विख्यात विष्णु मंदिर है। यहां कई लोग जाते हैं श्राद्ध अर्पण करने के लिए। और फिर जहां गंगा मिलती है सागर से, बे ऑफ बंगाल में, वहां भी गए। इस स्थान को गंगा सागर ही कहा जाता है और जनवरी महीने के अंत में प्रतिवर्ष यहां पर संत पुरुषों की और पुण्यशाली लोगों की बड़ी सभा होती है। जिस प्रकार प्रयाग में माघ मेला लगता है, गंगा सागर में ये सब क्रियाएं समाप्त करने के बाद श्री बलराम महेंद्र पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट परशुराम से हुई, जो भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार है। अर्थात ये दोनों अवतार के मध्य में भेंट हुई, जिस प्रकार से परशुराम अवतार की भेंट भगवान श्री राम से भी हुई थी। तत्पश्चात श्री बलराम दक्षिण भारत की ओर मुड़े। गोदावरी नदी के तट पर जितने भी तीर्थ स्थान थे वहां भी गए। भीमरथी नदी के तट पर स्वामी कार्तिकेय की जो मूर्ति है वे वहां भी गए। फिर महाराष्ट्र के एक प्रोविंस है शैलापुर, वहां गए। वहां से फिर द्रविड़ देश। दक्षिण भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है और इसको कहा गया है पंच द्रविड़। और उत्तर भारत को भी 5 भाग में विभाजित किया गया है और उन्हें कहते हैं पंच गौड़। इस युग के प्रमुख आचार्यगण, विशेष करके शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क, वे सब का आविर्भाव इन द्रविड़ देश में हुआ था। परंतु चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव पंच गौड़ में हुआ था, बंगाल में। तो दक्षिण भारत के द्रविड़ देश में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान वेंकटाचल है, जिसे बालाजी के नाम से भी जाया जाता है। बालाजी का दर्शन करने के बाद बलराम जी विष्णु कांची जाते हैं और फिर कावेरी के तट पर सभी जगह

जाते हैं। विष्णु कांची का भ्रमण करते समय वे शिव कांची भी पहुंचे, कावेरी नदी में स्नान किया और फिर रंग क्षेत्र पहुंचे। कहा गया है कि सबसे बड़ा विष्णु मंदिर सारे जगत में रंग क्षेत्र है और वहां की जो श्रीमूर्ति है विष्णु की श्रीमूर्ति, उसे रंगनाथ कहते हैं। एक वैसा ही मंदिर रंगनाथ का वृंदावन में भी है, परंतु रंग क्षेत्र जितना बड़ा नहीं है। तो रंग क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद बलराम जी मदुराई भी जाते हैं। मदुराई को कभी काल दक्षिण भारत का मथुरा कहते हैं। वहां से फिर वो सेतु बंद जाते हैं, वो स्थान जहां भगवान श्री रामचंद्र ने भारत से लंका का सेतु निर्माण किया था। इस स्थान पर बलराम ने स्थानीय ब्राह्मणों को 10,000 गौवें दान में दी। ऐसा कहा गया है वैदिक रीति के अनुसार कि जब एक धनवान व्यक्ति कोई भी तीर्थ स्थल पर जाता है तो वहां के स्थानीय पुरोहितों को घर देता है, गौवें देते हैं, वस्त्र आभूषण देते हैं। स्थानीय ब्राह्मणों को इस प्रकार से जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी, परंतु ये रीत आज इस कलयुग में बिगड़ चुकी है। जो धनवान लोग होते हैं वे ऐसे तीर्थ स्थान में जाने को उनके पास कोई आकर्षण नहीं है, और जो ब्राह्मण पुरोहित ऐसे यात्रियों पर निर्भर रहते थे वे भी अब ऐसे यात्रियों के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो नहीं भी निभाते हैं। उन्हें कहा जाता था पांडा या पंडित, अर्थात वे बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे, और जो कोई भी यात्री वहां आते थे उनको तीर्थ स्थान का महत्व इत्यादि समझाते थे। तो इस प्रकार यात्री और पुरोहित दोनों को लाभ होता था एक दूसरे से। भागवत पुराण के विवरण से यह स्पष्ट है कि जब भगवान श्री बलराम इन सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे उस समय उन्होंने सभी वैदिक सिद्धांतों को निभाया। जब कभी भी हम तीर्थ यात्रा पर होते हैं तो महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि हमें 10 धाम अपराधों से बचे रहना चाहिए, और वे अपराध इस प्रकार है: उस गुरु का निरादर करना जो शिष्य को धाम का दर्शन करवाता है, दूसरा ऐसी सोच रखना कि भगवान का धाम शाश्वत नहीं है, अनित्य है, तीसरा अपराध धाम के किसी भी निवासियों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा करना, और उन यात्रियों के प्रति भी जो वहां भ्रमण के लिए आते हैं, अर्थात ये सोचना कि ये लोग सामान्य लोग हैं, चौथा अपराध भगवत धाम में निवास करते हुए भौतिक कार्य करना, पांचवा धाम का उपयोग व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति के लिए किया जाए, जैसे मूर्ति दिखलाकर पैसे बनाना या संकीर्तन से अपने लिए आर्थिक उन्नति करना। छठा अपराध है कि भगवान के तीर्थ स्थल को एक संसारिक देश का भाग समझना, या तो फिर ऐसा समझना कि भगवान के संबंधित तीर्थ स्थल देवताओं के संबंधित तीर्थ स्थल के बराबर है। पवित्र स्थल धाम कितना बड़ा है उसको नापने का प्रयास करना यह भी अपराध है। धाम में रहते हुए पाप कर्म करना अपराध है। वृंदावन धाम को नवद्वीप धाम से भिन्न समझना अपराध है। उन शास्त्रों की निंदा करना जो भगवान की तीर्थ स्थलों की महिमा बतलाते हैं। और दसवां अपराध है श्रद्धाहीन रहना और ऐसा सोचना कि धाम की जितनी महिमा बताई गई है वो सब काल्पनिक है। वास्तव में तीर्थ स्थलों में जो भी कुछ भक्ति में कार्य हम करते हैं वो 1,000 गुना ज्यादा हो जाता है। इसी कारण धाम में रहते हुए एक व्यक्ति बहुत ही तीव्र गति से प्रगति कर सकता है, यदि वो वहां रहे बिना कोई अपराध के। यदि हम वहां अपराध करते हैं तो उन अपराधों का परिणाम भी 1,000 गुना ज्यादा होता है। इसी कारण सावधान रहने की सलाह दी जाती है कि पवित्र तीर्थ स्थलों पर कभी कोई अपराध ना हो जाए। तो सेतुबंध पर गौओं का दान देने के बाद श्री बलराम जी कृतमाला तथा ताम्रपर्णी नदियों की ओर गए। ये दोनों नदियां बड़ी ही पावन है और उन दोनों में श्री बलराम ने स्नान किया। वहां से वे मलय पर्वत गए।
अगस्त्य मुनि यहां पर रहते थे और श्री बलराम जी उनको मिलने गए, उन्हें अपना सादर प्रणाम किया और फिर उस महामुनि का आशीर्वाद लेने के बाद वे इंडियन ओशन की ओर गए, जिस स्थान को आज केप कॉमरन कहते हैं। वहां दुर्गा देवी का एक भव्य मंदिर था जिन्हें वहां कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। ये कन्याकुमारी का मंदिर, भगवान श्री राम भी यहां आए थे, इसी कारण ऐसा समझा जाता है कि यह मंदिर कई लाखों वर्षों से आज भी है। वहां से श्री बलराम फाल्गुन तीर्थ की ओर गए। ये वो भव्य स्थान है जहां भगवान श्री विष्णु अपने अवतार अनंत के रूप में लेटे हुए हैं। फाल्गुन तीर्थ के बाद श्री बलराम पंचाप्सरा स्थान पर गए। नियम अनुसार वहां भी स्नान करने के बाद उन्होंने सभी वैदिक क्रियाओं को निभाया। ये विष्णु स्थान भी विख्यात है। फिर केप कॉमरिन से श्री बलराम केरला की ओर गए। ये केरला देश आज भी दक्षिण भारत में है। केरला के बाद वे आए गोकर्ण तीर्थ, जहां शिवजी को निरंतर पूजा जाता है। बलराम ने फिर आर्या देवी के मंदिर का दर्शन किया जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है। उस द्वीप के बाद वे शूर पारक स्थान पर गए। तापी, पयोशनी और निर्विंध्या नदी में स्नान करने के पश्चात वे दंडकारण्य वन में आए। ये वही दंडकारण्य वन है जहां भगवान श्री राम वनवास के समय पर निवास करते थे। बलराम ने फिर सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी नदी नर्मदा पर आए। नर्मदा के तट पर महिष्मतिपुरी नाम का एक तीर्थ स्थल था। इस स्थल में कार्य संपूर्ण करने के बाद बलराम जी वापस लौटे प्रभास तीर्थ पर, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। प्रभास तीर्थ पर उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कुरुक्षेत्र पर अधिकांश सभी क्षत्रिय मारे गए। ये सुनकर कि संसार का बोझा कम हो गया है, बलराम को शांति मिली। श्री कृष्ण और बलराम दोनों इस धरती पर महत्वाकांक्षी क्षत्रिय राजा के द्वारा निर्मित सेनाओं का जो भार है उसे कम करने के लिए प्रकट हुए थे। भौतिक जीवन की यही रीत है कि जीवन की जितनी कम से कम आवश्यकता है उनमें संतुष्ट नहीं रहना। महत्वाकांक्षा होने के कारण लोगों की मांग बढ़ती है, उनकी अनैतिक इच्छाएं प्रकृति के कानून द्वारा या भगवान के कानून के द्वारा फिर रोकी जाती है। भूखमरी, युद्ध, बीमारियां और ऐसे अन्य विपत्तियों द्वारा। भगवान श्री बलराम ने उनसे यह भी सुना कि यद्यपि अधिकांश क्षत्रिय मारे गए हैं फिर भी ये युद्ध अभी चल रहा है। ये सुनते हुए ये युद्ध भूमि पर गए और उस दिन पहुंचे जब भीमसेन और दुर्योधन के मध्य में युद्ध हो रहा था। उन दोनों का शुभ चिंतक होने के कारण बलराम ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे दोनों रुके नहीं। जब उस स्थान पर बलराम पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर और उनके अनुज नकुल, सहदेव और साथ ही श्री कृष्ण और अर्जुन, इन सभी ने तुरंत उनको सादर प्रणाम किया, परंतु कुछ बात नहीं की उन्होंने। उनका मौन रहने का कारण यह था कि बलराम कुछ हद तक दुर्योधन के प्रति स्नेह दर्शाते थे, क्योंकि दुर्योधन ने गदा युद्ध की कला बलराम जी से सीखी थी। जिस समय युद्ध हो रहा था तब युधिष्ठिर ने और अन्य भाइयों ने यह सोचा कि बलराम वहां आए होंगे दुर्योधन के पक्ष में कुछ कहने के लिए, इसी कारण वे चुप रहे। दुर्योधन और भीमसेन दोनों अत्यंत आतुर थे गदा युद्ध में और बड़े ही निपुणता के साथ एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे। यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि वे दोनों एक दूसरे पर अत्यंत क्रोधित थे। श्री बलराम इस युद्ध को रोकना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने कहा कि हे मेरे प्रिय दुर्योधन और भीमसेन, मुझे पता है कि तुम दोनों बड़े योद्धा हो और संसार तुम लोगों को महावीर के नाम से जानते हैं, फिर भी मैं ये समझता हूं कि दुर्योधन से अधिक शारीरिक बल भीमसेन के पास है।
परंतु दूसरी ओर गदा युद्ध की कला में दुर्योधन अधिक श्रेष्ठ है। इन दोनों बातों को मध्य रखते हुए मेरा ये मत है कि आप दोनों बराबर के हैं युद्ध की कला में, और इस परिस्थिति में कोई एक भी पराजित हो जाए इसकी संभावना बहुत कम है। इसी कारण मैं तुमसे याचना करता हूं कि युद्ध में अपना समय व्यर्थ मत करो। मेरी ये इच्छा है कि आप ये युद्ध बंद कर दो, यह आवश्यक नहीं है। तो बलराम के द्वारा ये अच्छी सलाह भीम और दुर्योधन को दी गई, ये उन दोनों के हित में थी। परंतु एक दूसरों के प्रति वे इतने क्रोधित थे कि वे केवल अपने जीवन भर की शत्रुता याद करके केवल एक दूसरों को मारने के लिए ही सोच सकते थे, और बलराम के इस उपदेश को उन्होंने कुछ महत्व नहीं दिया। एक दूसरे को आरोप और दुर्व्यवहार को स्मरण करते हुए वे पागल जैसे हो गए थे। तब श्री बलराम ने समझा कि उनकी क्या गति होने वाली है, और फिर इस मामले में उनको कोई इच्छा नहीं हुई आगे बढ़ने की। इसी कारण वहां रुकने के स्थान पर उन्होंने निश्चय किया कि वो द्वारका लौट जाएंगे। तो द्वारका प्रस्थान करने के बाद जहां उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ, बलराम जी फिर से एक बार पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य आए, जहां पर सब संत पुरुष और ब्राह्मण उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। वे सब ने जान लिया था कि क्षत्रिय होते हुए भी भगवान श्री बलराम ने अब युद्ध करने को विराम दे दिया है, क्योंकि ब्राह्मण और संत पुरुष सदा शांति और समृद्धि चाहते हैं। इसी कारण वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन सभी ने बलराम जी को आलिंगन किया और उन्हें अनेकों प्रकार के यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं नैमिषारण्य में जो यज्ञ साधारण मनुष्य करते हैं वो बलराम जी के लिए आवश्यक नहीं था, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, वो दूसरों के द्वारा किए हुए यज्ञों के भोक्ता है। इसी कारण जब उन्होंने ये यज्ञ स्वयं किए तो उन्होंने केवल सामान्य मनुष्य को एकमात्र शिक्षा देने के लिए ऐसा किया कि उन्हें वेद के कठन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। श्री बलराम स्वयं अनंत शेष है, आदि विष्णु है, सर्वशक्तिमान है, और यदि कोई सुबह शाम उनकी लीलाओं का स्मरण करता है तो वो निश्चित ही महान भक्त बनेगा। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का कठन है। तो याद रहे, बलराम पूर्णिमा इसी महीने की 28 तारीख को शुक्रवार को है, और एक भव्य उत्सव मनाया जाएगा इस्कॉन ब्रिस्बन मंदिर पर, 8 Lee Road डेरा। ये कार्यक्रम शाम के 4:30 बजे से शुरू होगा, और सभी को सादर आमंत्रण है। सभी को सादर आमंत्रण है, और सभी के लिए पूर्ण प्रसाद रूपी भोजन रहेगा। याद रहे, ये निमंत्रण सबके लिए है। हरे कृष्णा।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो बिजवानी पर। मैं जतीश पूरन आपका साथ हो गया हूँ दोस्तों, और चलो एक घंटा के लिए प्रोग्राम है और उम्मीद है आप हमारे साथ देंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे ब्रिस्बेन का क्या हाल है दोस्तों। आज के लिए वेदर कहा गया है कि 11 and 24 और 1 millimeter ऑफ रेन। कल के लिए 14 and 23 रहेगा, 2 millimeter ऑफ रेन। ट्यूजडे को कहा गया है 14 हो जाएगा, 14 and 25, 5 millimeter ऑफ रेन। वेंसडे को 16 and 27 रहेगा, 6 millimeter रेन। और थर्सडे को 13 and 25 रहेगा, नो रेन। फ्राइडे को 13 and 26 नो रेन। और शनिवार को 12 and 24 1 mm रेन। तो ये रहा हमारा वेदर पैटर्न दोस्तों, और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। नंबर है 04300031701 या आप 3279-1701 से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर हम आपके लिए पेश करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसे कि एक घंटा है तो थोड़ा समय कम होता है, तो चलिए इस गीत को सुनते हैं। शान और साधना सरगम से आप सुनेंगे दोस्तों रेडियो बिजवानी।

जी हाँ दोस्तों, हंगामा का गीत अभी आपने सुना, चैन आपको मिला, शान और साधना सरगम से रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं। चलिए अगला जो गीत है दोस्तों, ये गीत 1974 फिल्म हाथ की सफाई का है और गाए हैं रफी साहब और लता मंगेशकर जी, कल्याण जी आनंद जी के संगीत पर और गुलशन बावरा का लिखा हुआ दोस्तों। जी हाँ, वादा कर ले साजना।

जी हाँ दोस्तों, 9:11 हो गए हैं और 10 बजे तक मैं आपका साथ रहूंगा। देखिए, अगर मैं आपसे पूछो, कोई अगर आपको प्यार और अपनापन से देखे तो आप कौन से गीत याद करोगे? चलो नहीं, ये गाना नहीं, लेकिन हम ये गाना

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com.
2: Tal Event Shan ke saath pesh karta hai Grand Bhajan Night. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
3: और हाँ दोस्तों, आपको याद रहे इस कार्यक्रम के बाद में संगीत की झनकार, फिर रॉय सिंह है और सुशीला है, फिर 5 बजे से शशि झोकन के साथ आप हो जाएंगे और फिर कार्यक्रम चलता रहेगा दोस्तों, और आप कार्यक्रम सुनते रहे और फिर सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो गीत है रफ़ी साहब ने गाए हैं और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत पर, गीत में शायद यही कह रहा होगा, जी हाँ, मैं तुम्हें सुबह शाम हमेशा

much for tuning in. अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर. और देखिए दोस्तों, अगला जो गीत है आपको तो मैं बोलूँगा, आपको पता चल जाएगा. जी हाँ दोस्तों, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर. तुम चाहे समझो या ना समझो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही तड़पता है. जी हाँ दोस्तों, फिल्म यहूदी का गाना है, 1958 सॉन्ग है. और इस गीत को गाया है मुकेश जी ने और शंकर जय किशन के संगीत पर शैलेंद्र, जी हाँ उन्होंने लिखा था इस गीत को दोस्तों. लिरिक्स तो सुनते हैं.

और हाँ दोस्तों, अगर अभी आप शामिल हुए इस प्रोग्राम में तो चलो आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग इंटरनेट से भी सुन रहे हैं, दूर दूर से आप लोग सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी

0: अपनापन।
1: जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। अगला जो गीत है फिल्म चिराग का है, 1969 मूवी, और इसका दो वर्जन है, एक रफी साहब ने गाया है और एक लता मंगेशकर ने गाया है, और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ और म्यूजिक को दिया था मदन मोहन ने, और पर्दे पर सुनील दत्त और आशा पारक, आपको शायद याद होगा दोस्तों। कहते हैं कि दोस्तों, मोहब्बत का अगर आँख की ज़ुबान मिल जाए, जी हाँ, मोहब्बत को अगर आँखों की ज़ुबान मिल जाए तो शायद वो कहेगी, क्या कहेगी, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जी हाँ, रफ़ी साहब से आप सुनेंगे।

जी हाँ, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है दोस्तों। और कभी कभी मोहब्बत दिल से होती है, लेकिन जो सामने वाला दिल की आवाज समझ नहीं पाता है कि नहीं। तो चलिए, कौन सा गीत है सुनाते हैं आपको रफी साहब। आज रफी साहब छाया हुआ है दोस्तों, पत्थर के सनम। जी हाँ दोस्तों, पत्थर के सनम तुझे हमने मोह

आज के मूड कुछ ऐसा ही बन गया है दोस्तों, जब हम अनाउंसर्स किसी मूड में चले जाते हैं तो उसका बदलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। जी हाँ, तो आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। अगला जो गीत है फिल्म प्रोफेसर का है 1962। जी हाँ, आपको याद होगा रफ़ी साहब ने गाया है इस गीत को और शंकर जय किशन का संगीत है, हजरत जयपुरी ने इसको लिखा है और शमी कपूर और कल्पना के लिए। और ये जो गाना है दोस्तों, ये गाना भी थोड़ा कुछ ऐसे चुलबुली और रोमांटिक, बिल्कुल शमी कपूर स्टाइल का गाना है। तो चलो सुनते हैं दोस्तों।

जी हाँ, आज दिल तोड़ने वाला मूड है दोस्तों, कुछ ऐसे हो गया आज, मालूम नहीं क्या बात है। और चलिए 20 मिनट रह गए हैं 10 बजने में, और हम आपके साथ 10 बजे तक रहेगा, आई मीन 10 बजने में, सॉरी 10 बजे तक मैं रहूँगा आपके साथ, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कहते कि कभी कभी जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, बस उस इंसान के साथ नहीं मिलता जिसके साथ कि सबसे जी हाँ, जिसके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि नहीं। रफ़ी साहब और लता जी से आप सुनेंगे एक बहुत प्यारा गीत है, दर्द भरा गीत है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।

और अगर आपसे पूछूं दोस्तों, अगर आपसे कहूं कि तुम्हारे बिना मेरा दिल कहीं नहीं, म्यूजिक मिल गया, कहीं नहीं लगता, मैं क्या करूं, तुमसे दूर रहकर जी हाँ हर जगह अधूरी सी लगती है। बताइए कौन सा गीत है। म्यूजिक तो आपको मिल गया, और खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो गीत है, ये गीत फिल्म इज्जत का गीत है, और मोहम्मद रफ़ी साथ में है, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर, शाहिल लुधियानवी का लिरिक्स है, धर्मेंद्रा और तनुजा के लिए। कौन सा गीत है दोस्तों? जी हाँ, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

समय कहाँ गया, बहुत जोर से गया दोस्तों। खैर चलो, अभी यहाँ से और भी कार्यक्रम आप सुनेंगे दोस्तों। मेरा छोटा सा प्रोग्राम था और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। और देखिए, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जहाँ वक्त रुक जाए तो दिल को कोई शिकायत ना हो। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब और आशा जी से इस गीत को आप सुनेंगे और यही उम्मीद है कि आज का जो छोटा सा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और संगीत की झनकार और उसके बाद में रोहित सिंह और सुशीला और फिर 5 बजे से शशि झोकन और सताक्षी भी आएंगी रात को, ठीक है। तो चलिए, फिल्म हवास का गाना है, फिल्म हम दोनों का गाना है और इसी के साथ मैं भी निकलता हूँ। मिलूंगा कल सुबह, भूलना मत अमिता के साथ, ठीक 7 बजे से, ठीक है। तो आप हमारा साथ जरूर दें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ द वीकेंड।

0: ब्रिस्बेन की पहली पसंद 79.1 ब्रिसवाणी AM।
1: साथ देने के लिए, हुए इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान और ये है रविवार। जी हाँ, रविवार 23rd of August। इंतजार करने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक मैं आपका साथ हो जाता हूँ। चुने हुए लोकप्रिय संगीत, पुरानी फिल्मों से निकाली हुई मिले जुले संगीत, लेकिन प्रोग्राम का शुरुआत हर वक्त करते हैं यादों के सफर के साथ। आपको ले चलते हैं डाउन मेमोरी लाइन, जस्ट टू रिफ्लेक्ट वेयर वर यू व्हेन यू फर्स्ट हैड दिस सॉन्ग, और हु यू वर विथ व्हेन यू फर्स्ट हैड दिस सॉन्ग। फिलहाल संगीत की जानकार आपके साथी फिरोज खान हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक। हमारे तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए ये महीना रबुल अव्वल का महीना 14,048 ये महीना उनके लिए बहुत ही अलग जगह रखता है। जी हाँ, ये है मिलादुन नबी, जिसको मनाते हैं ऑन द 12th day ऑफ अब रबुल अव्वल। आज तो 10th day है, 12th day विल बी ट्यूसडे। तो आपकी इजाजत से मैं प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा दो नाथ से, और उसके बाद जारी रखेंगे संगीत की जानकार। यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।